0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: यू वॉच अस व्यूअर यू ट्रस्ट अस एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू वोट फॉर एनडीटीवी एट द आईटीए अवार्ड्स 2026 यू हैव गॉट दैट पावर Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
2: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
0: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 टू डीकोड द शिफ्ट्स redraw possibilities NDTV World Summit 2026 a world between orders 22nd and 23rd October New Delhi
4: across the country
0: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea witnessed history being made

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स बनना नहीं आसान है अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
1: अरे वाह 1,00,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन करके
2: चुप संकेत
1: स्टॉप आप
3: मैं हूं कैप्टन वाई फ्रॉम SBI आपका साइबर रक्षक मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है पर कोई प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाए वो भी एक अननोन ग्रुप ज्वाइन करने पे तो समझ जाओ ये साइबर फ्रॉड है
1: कैप्टन वाई जी आप तो एकदम कमाल आदमी हो
3: बहुत ज्यादा रिटर्न्स की लालच में अनजाने ग्रुप्स को ज्वाइन करने से पहले हमेशा पूछो वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: A healthier India doesn't happen in a day.
6: It starts with the health choices that we make every day.
7: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
5: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
8: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
7: One informed choice और एक healthier action.
5: Giving better health in more hands. Every day.

0: आई मीन आई थिंक सबसे काम बंदा हमने जो देखा था वो स्मिथ था. वी यूज टू टॉक अ लॉट ऑन हाउ ही इज प्रोग्रेसिंग.
1: हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन स्मिथ के एक नेबर हैं. सर बताइए कि आप कैप्टन स्मिथ को कब से जानते थे, उनके बारे में आपको क्या कहना है?
2: लड़का का फादर, उसका बड़ा बड़ा फादर, उसकी ग्रैंड मदर, सब बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी. भैया हमारे वैष्णव धर्म हवेली, वहाँ जय श्री कृष्ण ऐसा, और बिजनेस भी मैंने उससे काफ़ी किया. उसका फादर के साथ, ये पायलट के साथ नहीं, मेरा काफ़ी
1: पता चला कि ऐसी कुछ घटना हुई है और कैप्टन स्मिथ ने इतने लोगों की जान बचाई, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? क्योंकि यही बच्चे के साथ आपने देखा.
2: नाम रोशन हो गया. हमारा लड़का जैसा खेलते हुए देखा, क्रिकेट खेलते हुए, इसके साथ खेलते हुए, बहुत अच्छी पूरा फैमिली इज ए वेरी काइंड फैमिली, एकदम अच्छा फैमिली, जेंटलमैन. दो भाई, उपेंद्र भाई एंड किशोर भाई. किशोर भाई को एक लड़का, एक लड़की, वो भी पायलट बनाए किशोर भाई. और एक उपेंद्र भाई, इसका लड़का, उसकी मम्मी के नाम गीता बेन, बहुत अच्छा आदमी.
1: हमारे साथ बात करने के लिए अक्षय दोषी हैं. ये वो शख्स हैं जिसने कैप्टन स्मिथ के परिजन को एयरपोर्ट लेकर गए जब उन्हें ये खबर पता चली. सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कैप्टन स्मिथ को कब से जानते थे और उनके परिजन को आपको कैसे जानते
3: थे? वो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, तो मैं उनको पिछले 14-15 ईयर्स से जानता हूँ. एंड एज नेबर्स, एज फ्रेंड्स, हम एक दूसरे के घर हमारा आना जाना रहता है, तो या वी नो हिम फ्रॉम लास्ट 14-15 ईयर्स.
1: गुड 14-15 ईयर्स. और जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है उसके बाद ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं कि हर कोई, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कैप्टन स्मिथ. उनके परिवार का रिएक्शन क्या था व्हेन द न्यूज़ ब्रोक आउट टू देम?
3: आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एवरीबडी वॉज नर्वस, एवरीबडी वॉज कंसर्न, सो वॉज एवरी मेंबर फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल. आई थिंक द न्यूज़ ब्रोक आउट इन द न्यूज़ रूम फर्स्ट एंड देन दे गॉट टू नो. सो या स्वाभाविक है कि वो काफ़ी कंसर्न थे. हम भी अभी कंसर्न है काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ अपडेट नहीं आ पा रही है हमारे पास उनके यहाँ से. बट ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग स्टेबल. सो या वी आर जस्ट विशिंग दैट ही कम्स होम बैक सून एंड रिकवर्स फास्ट.
4: Joining me live is Aharon Lapidot, flight expert who served in the Israel Air Force. Aharon, I hope I'm pronouncing your name correctly, but thank you for joining us here on NDTV. I want to very quickly ask you, if we asked you to assess what happened over those couple of hours mid-air, the horrifying images that we've seen from inside, would you say this is nothing short of a miracle that all the passengers on board have survived? I want your assessment.
5: Hi, thank you for having me. I said yesterday that it's not one miracle, but it's a double miracle. The first miracle is thanks to Captain Smith that was able to stand this vicious attack, that he was stabbed in the cockpit and he was attacked by his co-pilot. And the second miracle is that there was another pilot in the airplane, and that he could continue flying the airplane and bring it to safe landing in Tabuk. So it's a double miracle, but Captain Smith is the hero of the day. There is no question. He saved 174 passengers, 8 crew, if I remember right, and averted a very, very severe situation that could affect the whole region and maybe the whole world.
4: Absolutely.
5: Because if the plane would have fallen from the sky, it would have been there would be terrible consequences. So he single-handedly saved the day and averted the situation.
4: It's commendable how many people have come out across the world, be it global leaders, be it aviation experts, be it people who were inside that aircraft, who've come out and hailed Captain Smith for his presence of mind. And despite the adversities he faced, that opening of the door was so, so crucial at that moment. Thank you so much, Aharon, for joining us live here on Breaking Ground. We're going to be slipping into a short break, but on the other side, we come back with Senior Managing Editor Vishnu Shom taking you inside the cockpit to decode those hours and the fight back through a simulator. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: इट रियली मैटर्स।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे
3: बोझे पेंट रंग बना रहे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
6: सबका राजा आर्थोर मसाला।
7: A healthier India doesn't happen in a day.
8: It starts with the health choices that we make every day.
9: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
7: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
10: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
9: One informed choice और एक healthier action.
7: Giving better health in more hands. Every day.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: यू वॉच अस यू ट्रस्ट अस नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
2: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है.
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: This is a world between otters.
3: Underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
4: I'm interviewing Rudransh Patil for a second time. That's because this is his third medal. हमारे साथ है कमलजीत और सुरुचि जिन्होंने आज का गोल्ड मेडल लिया है। बारोनिका इलनगोवन who has won a historic bronze medal in pole vault, the first for India.
5: Asian Games, Olympic Games, Commonwealth Games, World Championship, India's greatest.
6: Gold Rush on the field.
7: Go for glory only on NDTV.

0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
2: बजे पेंट्स रंग बना रहे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: A healthier India doesn't happen in a day.
7: It starts with the health choices that we make every day.
8: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
6: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
9: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
8: One informed choice और एक healthier action.
6: Giving better health in more hands every day.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: गाइस मेरा तीसरा स्टोर, अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए, एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल
3: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो, लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता, और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है,
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला,
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
8: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot. You think you can beat me? See you at the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season 2, bigger, better. Game on.
8: The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Off 3rd October, go to Golf Course, Delhi.
10: Maddie, I need to open a savings account.
3: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khol lo.
10: Small bank?
3: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account business, Maxima business, Privilege RD, everything. There's nothing small about them.
10: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बजे पेंट्स रंग बना रहे।
2: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
10: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आग्यों मसाला।
3: A healthier India doesn't happen in a day.
4: It starts with the health choices that we make every day.
5: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
3: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
6: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
5: One informed choice और एक healthier action.
3: Giving better health in more hands. Every day.